0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश्य कुतो सेक, स्वामी वंश्य उतानु सेक, स्वामिनी वंश्य नवत वडिन सेक।
0: तेहिन प्यानी उन्वांस्य मरण तुत्ताने सीपत कर्मीन जीवन दायक पूप्यात गैलवीम दायक कुशलाना तप्य बट पुद कर्म ओब हम सिटमिन बट सेवे खरानट अप सुदुसान वाचिन सल की मगन अप्यो बट तुति पुदमो क्रिस्तुन महंस्य श्री सर रेटा श्री रुधि रेटा सहभागी बन अप सम शुद्धात्मन विशे ने सत्कर्णु लबन लिस अपी अवनतवा आयद सिटिमो स्वामिनी मुल्लो वही पेतर पवत्ना उबगे शुद्ध सभाव सी कल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम सभाव दया गुणेन पिरिपुन्वान्नट सलसुन मैनव